मेरा जब कोई भी तरह नहीं कुछ तोड़ मेरे भयंकर स्कैन करे क्यू आर से मेरे जैसे एलुमिनियम पी अरे मेरे बता है कीड़े कौन बोला लेकिन नामी को तू भी के बहुत आज देखो मैं भी बचे कौन है दानवों की दावत तारियां खाने निकले डॉलर साइन और सीधे मौत ये बावड़ी पूछ के शांत से पूछे जीत मेरी उबाल थी खोना का तो मैजिक जूस अब मेरे घर के लड़के बोले दैट्स द डूड मामा आज की पार्टी मार के भर दो भूत तीन भाई तेरा क्रू वेंट टू टू परंतु तू कलम से दूर है कल से स्कूल मास्टर मास्टर मास्टर बोले पूरे टाइम औकात खा तू पट पड़ा तू बिच बॉय गेट आउट द वे उसे

पॉप से मस्ती पूरे खोड़ा से घड़ोली तेरी खोद दे चमड़ी फेस चेक की बकचोदियां हैं बातें घर की देखा मुझे तो यहां बंदियों की सांस चढ़ गई टांग फिसल गई बाप बोले बेटी बाहर निकल गई हाथ से है वो गर्मी सत्ता कुछ भी रहने दे जाके बैठ ठेके के बार पैक पी के दिमाग स्ट्रेस सीधा दीवार पे ब्लेस्ड हूं या बीमार या दोनों तेरा तेज है मेरा सो बोले मेरा फ्लो और आके बोले मुझे के नो जैसा समाज में उसी का आईना